0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: Toilet Bunny, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: दाई, धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी, सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु। कहाँ जाँदा राम्रो होला?
3: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ। पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ। त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ। अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
2: हो र, त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई?
3: सुन, त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन, सेतो पानी, महिनावारी गडबडी, गर्भवती जाँच, पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ। र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स, हर्निया, एपेन्डिक्स, थाइराइड, पित्त थैली, गाँठागुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
2: हजुर, मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
3: मेडिकेयर क्लिनिक, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 11, बिपी चोक नजिक, उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा। सम्पर्क नम्बर 97639711786 र 98224392377।
4: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
5: खुसीके खबर, खुसीके खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी।
6: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार, परसुती व स्त्री रोग के सक्कू उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार, मस्तिष्क हो मानसिक रोग के सक्कू उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाँटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आइल बा।
5: ओस्तक, सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सक्कू उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे ओ और सक्कू सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महिनाक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
6: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महिनाक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल, बीपी चोक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 081536465, 98249680665 ओ 98482680465।
7: यो कृष्ण सार एफएम
8: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बीडीएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
1: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
2: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
3: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
5: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
6: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
5: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
6: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी।
5: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी व सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
6: थप आवश्यक सरसल्लाह व जानकारी लाग लगभग संघीय व प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय व स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा।
5: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग व तालीम केन्द्र खजुरा बाँके।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: drip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
3: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
2: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
3: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
2: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
3: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
2: सम्पर्क नम्बर 081-535-717।
4: आज यहाँ कहाँ भटका थियो?
5: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
4: परेशान हो कोई बात नहीं है, प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। वहाँ तमामन मेयर केर आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेयर केर आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
5: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
4: संपर्क नंबर है 98487-27916।
6: ए रुक रुक रुक,
7: के भयो, किन कराएको यस्तो?
6: दाई यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे।
8: के
2: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन, बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
3: नेपालगञ्जको बिपी चोकमा अवस्थित जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीभीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
2: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
3: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570।
9: यो कृष्ण सार एफएम
10: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।
11: भावना म्युजिक सोलुसन प्रस्तुत गर्दछ।

0: बुढुहा कान के समस्या बा, उपचार कराइकला कहाँ लैजिदा हो?
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्रमा जाइन, वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई। ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुनना, कान दम्मा हुईना, विटामिन के उपचार और परामर्श, वो लंबा समय से कान पकती रहले, कान के जालिम पाल परल, कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई। वाकर संगे कान कम सुनना, विटामिन के लाग कान में लगाइना, सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए। जस्ते बीटीई, सीआईसी, आरआईसी जैसी मेसिन फे वहाँ मिलात।
0: ए ओसिड हो कलसे बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेल से।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

बद्ध हुए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: जनरल कैंसर मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
1: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: Bunny, extreme energy drink.
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्यक्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: भर्ना खुल्यो।
4: होप इंटरनेशनल एकेडमी मा नया शैक्षिक सत्र का लागि कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो।
2: हजुर, कंप्यूटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल मैनेजमेंट संकाय मा नया भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु।
4: नेपालगंज मा विगत 21 वर्ष देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालय मा सुविधा सम्पन्न कंप्यूटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
3: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
4: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको
3: होप इंटरनेशनल एकेडमी, गुणस्तरीय शिक्षा को भरपर्दो आधार।
4: थप जानकारी का लागि
3: संपर्क नंबर 081-551-462, 98580-24462, 98580-20645। ठेगाना होटल रोयल बांके को पूर्वतिर नेपालगंज बांके।
1: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: बद्ध हुए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान।
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

0: आज यहाँ कहाँ भटकत हो?
1: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
0: परेशान हो कोई बात नहीं है। प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुला कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बख्श पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेर केर आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेर केर आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
1: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
0: संपर्क नंबर है 98487916।
2: दैनिक रू 197 में रू 50 लाख को बीमा तीरे को संपूर्ण प्रीमियम फिरता। सूर्य ज्योति सही प्लान
3: सूर्य ज्योति लाइफ इंश्योरेंस जीवन को लागी।
4: नेपालगंज का लागी सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सक को साथ में गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श। गंभीर मृगौला रोग डायलिसिस व्यवस्थापन मृगौला संक्रमण पत्थरी को निदान तथा उपचार सुगर र उच्च रक्तचाप को उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तैयारी र निगरानी को लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डीएम नेफ्रोलोजिस्ट डॉक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स पित्त थैली आन्द्रा कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबीनबाट अपरेशन सेवा पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजबाट आउनु भएको एमसीएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बाल रोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला इन्डोस्कोपी जाँच इसिजी इजी एनसिभी एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुलमा व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकायका लागि आवेदन खुला गरिएको छ।
3: हो, भर्ना खुल्यो। व्यवसाय, बैंकिङ, उद्यमशीलता, होटल व्यवस्थापन, वित्त, कानून, पर्यटन तथा कर्पोरेट नेतृत्व क्षेत्रमा भविष्य निर्माण गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
2: व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, होटल व्यवस्थापन, पर्यटन, वित्त, व्यवसाय गणित र सामान्य कानून।
3: विज्ञान संकाय, चिकित्सा इन्जिनियरिङ, प्रविधि अनुसन्धान, स्वास्थ्य विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि
2: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विज्ञान।
3: विद्यार्थीहरूले आफ्नो करियर लक्ष्य अनुसार गणित, जीव विज्ञान वा कम्प्युटर विज्ञान जस्ता विषय संयोजन छनोट गर्न पनि सक्नेछन्।
2: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड?
3: हो, सबै विषयमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरू, केस स्टडी तथा परियोजनामूलक अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण,
2: पूर्ण दिवसीय कक्षा सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता सिप विकास,
3: आधुनिक विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान तथा होटेल व्यवस्थापन प्रयोगशाला, उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कार्यशाला,
2: नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, MBBS, BHM, BITM, BBA, CA, MBS तथा अन्य व्यवस्थापन तथा विज्ञान क्षेत्रका लागि करियर परामर्श,
3: उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको सुविधा। अफिस खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। कक्ष सञ्चालन 2083 असार 1 गतेदेखि। थप जानकारीका लागि
2: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल, पासाङ लामु रोड, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-532-607, 530-602।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है कहाँ जाए तो ठीक रही तनी बताए दियो हमका
4: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है उके साथ टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है
4: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037
5: नींद न आए हमको हाय जग सोना है
6: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्नीचर चाहियो आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज
7: हरेक सामानको खरिदमा 1,000 देखि 20,000 सम्म छुट 10 देखि 15 वर्ष सम्मको वारेन्टी साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ
6: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अगाडि
7: सम्पर्क 9705118470
6: सोफा हब नेपालगंज
7: विश्वासमा नम्बर 1
6: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट

0: Toilet Bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: हरेक अभिभावकको सपना हुन्छ आफ्ना छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन्, सुरक्षित वातावरणमा सिकुन् र उज्जवल भविष्य निर्माण गरून्।
2: त्यही सपना साकार पार्दै आएको छ नेपालगञ्ज 18 बाँकेमा अवस्थित एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था स्प्रिङडेल एकाडेमीले।
1: आधुनिक प्रविधि मैत्री कक्षा, अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट सिकाइ वातावरण, विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप र अनुशासित शैक्षिक संस्कार स्प्रिङडेल एकाडेमीको विशेषता हो।
2: ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा प्रदान गरिएको इन्टरनेसनल स्कुल अवार्डले विद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक गुणस्तर प्रमाणित गरिसकेको छ। यहाँ पढाइसँगै व्यवहारिक ज्ञान र आत्मविश्वास पनि सिक्न पाइन्छ।
1: नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 विज्ञान व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा भर्ना खुला गरिएको छ।
2: सिट सीमित भएकाले आजै आफ्नो भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा, सुरक्षित वातावरण र उज्जवल भविष्यको भरोसा स्प्रिङडेल एकाडेमी।
1: ठेगाना नेपालगञ्ज 18 बाँके। सम्पर्क फोन नम्बर 98582973।
3: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
4: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
3: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
4: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता करके तहे दिल हुआ जाए।
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगरपालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगरपालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज
5: मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
1: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
0: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है।
1: जानकारी रहक चाहिए, कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बांके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
2: हाय के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
3: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
2: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
3: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
2: कस्तो खबर?
3: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, MD इन्टरनल मेडिसिन TU, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गंगाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
2: ए साँच्चै?
3: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
2: ए त्यो त झन् राम्रो
3: हो नि। डाक्टर पूनम आचार्य MBBS, MD KU, IVF स्पेशलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS, MS KU, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
2: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
3: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
2: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
3: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
2: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
3: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
3: नानीलाई कुन स्कुल भर्ना गर्ने होला? म त साह्रै चिन्तामा पो छु।
4: ह्यात तेरिका, किन चिन्ता लिनु भएको? हाम्रै नेपालगञ्ज बाह्र बेलासपुरमा न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ कस्तो सुविधा छ र? उही किताब मात्रै घोकाउन त होला?
4: त्यस्तो होइन नि, त्यहाँ त डिजिटल क्लासरुम छ नि, जहाँ बालबालिकाहरूले आधुनिक प्रविधिबाट रमाइलो मान्दै सिक्छन्।
3: अनि सुरक्षाको कुरा नि? अहिलेको समयमा त डर पनि लाग्छ हौ।
4: त्यसको लागि चिन्ता लिनु पर्दैन, पुरै स्कुल परिसरभरि सिसिटिभी क्यामेराको निगरानी छ नि।
3: अनि शुल्क?
4: सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा नै यस विद्यालयको मुख्य विशेषता हो नि।
5: हाम्रा विशेषताहरू:
4: प्रविधि मैत्री शिक्षा,
3: गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ,
4: खेलकुदमा विशेष जोड,
3: शान्त र बालमैत्री वातावरण,
4: सिसिटिभी जडान भएको सुरक्षित विद्यालय परिसर
3: र स्कुल भ्यानको सुविधा समेत छ।
4: न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, नेपालगञ्ज बाह्र बेलासपुर, सम्पर्क नम्बर 081537505।
6: अम्मा के दवाई करावे के है, लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
7: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो? पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
6: अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
7: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथेन एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
6: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जायत हैं, कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
7: कांति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे, संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848206697, 9858023697 और 9804483697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है।
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081536465, 9829408665 और 9842880465।
2: बैक टू बैक, बैक टू बैक इन दिस सॉन्ग ऑन स्टे ट्यून्ड।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: নিপা চ্যানেলের এই গানটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানান। আপনার ফিলিংস জানার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবে না।
1: দৈনিক রু 197 মা রু 50 লাখ বিমা তিরেকো সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম ফিরতা সূর্যজ্যোতি সহি প্ল্যান
2: সূর্যজ্যোতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স জীবন কো লাগি।
3: बीर डेंटल, बीर डेंटल, बीर डेंटल।
4: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
5: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
4: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
5: फोन नम्बर 081 532 375।

0: आजे अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्रावधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसाय कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
1: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कर सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
2: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय केंद्र प्रयोगशाला निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जात है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
0: छोटो समय में धेरै संस्था में डाक्टर इंजीनियर तथा सीए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो। पेन्टागन कलेज तीनकुने काठमाडौँ।
3: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख।

0: शरीर में यह गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
1: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
0: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
2: Back to back. Back to back.
3: In this song on.
2: Stay tuned.

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

सम्बद्ध हुए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ओहो दाई, कता जाँदै हुनुहुन्छ?
1: हिजो आज के भयो के भयो बहिनी? कहिले पखाला लाग्छ, दिशा गर्दा रगत आउँछ, मलद्वारमा घाउ, दिशा गर्दा दुख्ने, चिलाउने, रगत देखा पर्ने समस्या भएको छ। त्यही चेक गर्न जाँदैछु, बरु कतातिर राम्रो होला?
0: मा पार्वती आयुर्वेद क्लिनिक जानुस् न, त्यहाँ त नयाँ प्रविधि आयुर्वेदिक सार सूत्र विधिद्वारा जरैदेखि उपचार गरिन्छ नि।
2: हजुर, यदि तपाईँलाई पनि यस्तो समस्या छ भने बवासिर, एनालफिसर अथवा फगन्दर जस्तो रोगहरूबाट ग्रसित भइसक्नु भएको हुन सक्छ। यी समस्याहरूलाई नलुकाई रोगबाट सधैँका लागि छुटकारा, दैनिक कामकाज गर्न अप्ठ्यारो नहुने र कुनै प्रकारको जोखिम र अस्पतालमा भर्ना नहुनु पर्ने गरी जोर्नी दुख्ने वा वात सम्बन्धी रोग, मृगौलाको पत्थरी, महिलाहरूमा हुने विभिन्न प्रकारको रोग तथा पाठेघर सम्बन्धी रोग, मधुमेह, सुगर रोग, आन्द्रा तथा पेट सम्बन्धी रोग, छाला सम्बन्धी रोग, पुरुषमा हुने यौन क्षमतामा कमी, कलेजो सम्बन्धी रोग, अनुहारमा हुने डन्डीफोर जस्तो रोग र पुरानो पेटको अल्सर तथा अन्य रोगहरूको उपचार सफलताको साथ गरिन्छ।
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म, साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म।
2: मा पार्वती आयुर्वेद क्लिनिक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, नेपालगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 98480 27590 र 081-5534-328।
4: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
5: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
6: बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरूमा भ्रष्टाचार जन्ने कसुर भएको थाहा पाएमा वा कुनै राष्ट्र सेवक कर्मचारीले घुस रिश्वत माग गरेमा निम्न ठेगानामा उजुरी गरौँ। मोबाइल नम्बर 98-5-80-43-888, कार्यालय प्रमुख, 98-5-80-45-788, सूचना अधिकारी र फोन नम्बर 081-550-626, 081-550-627, फ्याक्स नम्बर 081-550-426। 24 घन्टा सम्पर्क गर्न सकिने मोबाइल नम्बर 98-5-80-53-488, साथै पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 107 समेत सम्पर्क गर्नुहोला र कार्यालयको इमेल ciaanepalganj@gmail.com। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटोल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्ज।
7: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
8: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
7: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कई सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
8: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जात है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
9: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
10: हरेक सामानको खरिदमा 1,000 देखि 20,000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्षसम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि।
9: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ। स्थान राजा चोक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अगाडि।
10: सम्पर्क 97-05-11-48-70।
9: सोफा हब नेपालगञ्ज,
10: विश्वासमा नम्बर 1,
9: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।

0: toilet pony, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
3: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
2: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय हे निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
3: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संगे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके

0: Patagonia.
1: Extreme energy drink.
2: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
3: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्रावधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
2: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कर सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
3: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय केंद्र प्रयोगशाला निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जात है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टिभीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टिभीएस का नयाँ बाइक र स्कुटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्फ सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: चर्चा छ मार्केटमा, हाम्रो नाम घन्किन्छ।
3: नानीलाई कुन स्कुल भर्ना गर्ने होला? म त साह्रै चिन्तामा पो छु।
4: हेतरिका, किन चिन्ता लिनु भएको? हाम्रै नेपालगञ्ज 12 बेलासपुरमा न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ कस्तो सुविधा छ र? उही किताब मात्रै घोकाउन त होला?
4: त्यस्तो होइन नि, त्यहाँ त डिजिटल क्लासरुम छ नि, जहाँ बालबालिकाहरूले आधुनिक प्रविधिबाट रमाइलो मान्दै सिक्छन्।
3: अनि सुरक्षाको कुरा नि? अहिलेको समयमा त डर पनि लाग्छ हौ।
4: त्यसको लागि चिन्ता लिनु पर्दैन, पुरै स्कुल परिसरभरि सिसिटिभी क्यामेराको निगरानी छ नि।
3: अनि शुल्क?
4: सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा नै यस विद्यालयको मुख्य विशेषता हो नि।
0: हाम्रा विशेषताहरू: प्रविधि मैत्री शिक्षा,
3: गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ,
4: खेलकुदमा विशेष जोड,
3: शान्त र बालमैत्री वातावरण,
4: सिसिटिभी जडान भएको सुरक्षित विद्यालय परिसर
3: र स्कुल भ्यानको सुविधा समेत छ।
4: न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, नेपालगञ्ज 12 बेलासपुर। सम्पर्क नम्बर 081538505।
5: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
6: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
5: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
6: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
5: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है, घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
6: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
5: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
6: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
5: अरे बहनी, बाके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
7: आस है तो अब हमरो घर भी नवा जस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए।
6: हाँ दीदिया,
8: स्टार फर्नीचर लैंड, शिक्षा कार्यालय के सामने, बीपी चौक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 98680073 70 और 98195067 87 82।
9: यो कृष्ण सार FM
10: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्ति के तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी